सगल समगरी तुम रह सूत्र धार तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी.
2: मैं सरबंस भई मैं सरबंस.

0: गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहर पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समगरी तुमरा तुमते हो सो तुमरी गात मित तुम ही नानक दास तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जान। बोलना जी वाहिगुरु जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गोवर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराउन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए ते एक बहादुर सिमरी है घर नौन दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली।

गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उस दा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और वो कहिंदे ने चार युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये चार कलासां ने, या कह लईए ये चार स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलां विच पढ़ाण वाले ते मास्टरी कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज देच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उना दी जानकारी, उना दे प्राण दे तौर तरीकियां देच बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उना दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलां दे नाल वद्दी। सतयुग एक ऐसा युग से जिसनु कह दईए इते सिर्फ नर्सरी दी क्लास है, सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आदकाल जिसनु सतयुग कहिंदे ने कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखिर एक मासूम बच्चे देते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां। अजे वो जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा, जिम्मेवारियां निभाण दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो ते सिर्फ समा पास कर रहा है, वक्त पास कर रहा है। तो वक्त पास करने लई कोई खिडौने चाहिए ने, तो इस तरह दे नर्सरी दी क्लास विच खिडौने रखे जांदे ने। इंज कह लिए बच्चे खेडन लई आंदे ने, सिर्फ खेडन लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडन लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है, ए बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नूं खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नूं जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है, वैर विरोध तो रहत है और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितक्रिया तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी, बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ा नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे ता समझ नो विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहिदा हुंदा है। अजे ए हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहिंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, बावन अवतार आया।
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ए ढंग नाल खेडन, ए ढंग नाल बैठन, ए खिडौणियां नूं तोड़न ना, सिर्फ खेडन, तो बस इतनी ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतजुग नूं छाणीए पढ़िए कोई बहुती संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी, और बहुत कोई उसारू काम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंधरां दे चलोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उनां दे महल सन, जंगल दे फल फूल खा लेने, कंद मूल खा लेने उनां दी खुराक सी, दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकण लेना या नगन रहना, बस ए उनां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना ए इनां दा बिस्तर सी, और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए, इस तरह भ्रमण करदे रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फूल मिले तो किसी जंगली जानवर दा शिकार करके उसका मांस खा लेना, बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदिवासी आदि मनुख किसी भी देश में तुसी चले जाओ इसी तरीके नाल जीवदे सन, और आदि मनुख उन्हां नूं अज भी असी कहिंदे आ, तो मैज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़िया, अजे भी जंगलां दे च, अजे भी नगन, अजे भी जानवरां दा शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकणे, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनाने, अपना दामन ढकना, वही पुरानी तर्ज जिंदगी। तो किसे बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया, ए गोड़ियां दे भार चलन वाला ए बच्चा, खिडौणियां नाल खेडन वाला ए बच्चा थोड़ा वड्डा होया, तो इसनूं तहजीब सिखानी सी, इसनूं उठना बैठना सिखाना सी, इसनूं बोलना सिखाना सी, इसनूं पहनना सिखाना सी, इनूं खाना पीना सिखाना सी, जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनूं

शिष्य दी की मर्यादा है, छोटे बिरहा नू किस मर्यादा च रहना है और वड्डे बिरहा ने किस मर्यादा दी पालना करनी है। इस तरह दे समाज दी मर्यादा, नीति दी मर्यादा, धर्म दी मर्यादा बनाई गई। और जिस अवतारी पुरुष द्वारा बनाई गई उन्हें आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सहजे सहजे आखिर बच्चा वड्डा हुंदा है, समय दे नाल विकास जारी है। जैसे जैसे तुसी पीछे जाओगे मनुख इतना विकसित नहीं सी। इते देखदिया देखदिया बहुत भारी विकास हो गया और मनुख किथे दा किथे जा पहुंचे है। नगन रहिंदा सी पर अज हजारां तरह दे कपड़ियां दा जन्म दाता है। एक थां तो दूसरी थां ते इह पैदल जांदा सी, फिर पशुआं दी असवारी इसने कीती, फिर बैल गड्डी बनाई। पर अज ते मनुख आवाज तो भी तिखे हवाई जहाजां दा मालिक है। अज ते 24 घंटियां च सारी पृथ्वी दा चक्कर ला सकदा है, इतनी तेजी पैरां दे च आ गई। रुखां दी छां तले या पहाड़ां दी कंदरां दे च अपना जीवन बतीत करन वाला अज जमीन देते इसने फलक बोस इमारतां खड़ियां कीतियां। बड़े वड्डे वड्डे महल, गगन चुंबी महल, ए सब तो प्रथम इशारे ही करदा सी। इदे कुल जो भाषा सी इशारे ही सन। फिर सहजे सहजे इदी जबान चो जड़ी आवाज निकली, इने आवाज नू अल्फाज देने शुरू कीते, तरह तरह दिया भाषावां दा जन्म होया। बोले होया, समझे होया, काफी समय तक रह सके तो पत्थरां देते इसने लिखना आरंभ कीता, लिपि दा जन्म होया। फिर दरख्तां दे पत्तियां देते इसने लिखिया भोज पत्र। अज ए मनुख हजारां तरह दे छापे खानिया दा मालिक है और हजारां तरह दा कागज मौजूद है, बहुत तरह तरह दियां लिखतां जन्म ले रही ने। कंदमूल या कच्चा मांस खा लेना अज हजारां तरह दे पकवान मनुख ने जो है प्रगट कीते हुए ने हर देश दे और हर प्रांत दे, हर कौम दे, तरह तरह दे अपने व्यंजन, तरह तरह दा अपना भोजन, तरह तरह दे जो है स्वादिष्टी पदार्थ। गरस के जिंदगी दे जिस पहलू दे झात मारी है मनुख अगे वधे है। भोजन दी दुनिया दे, वस्त्रां दी दुनिया दे, फिर शस्त्रां दी दुनिया च लड़ पैंदा सी किसे नाल, ता इस दे कुल जड़े हथियार सन या ते मुंह दे दंद या उंगलियां दे नाखुन। इस वास्ते बहुते लोग प्राचीन नाखुन कटदे नहीं सन, नाखुन ते उन्हां दा हथियार सी। तो नाखुना दे नाल झरीट पा देनी या दंदा नाल कट खाना, यही इसदे जो है हथियार सन। मनुख दे दंदा नालों पशुआं दे दंद कुछ ज्यादा तिखे, मनुख दे नाखुना नालों बेशतर पशुआं दे नाखुन बड़े तेज और बड़े खतरनाक, शेर, चीता, बिल्ली इत्यादिक दे। तो अपने दंदा नूं और अपने नाखुना नूं पशुआं दे सामने कमजोर समझ के इसने लाठी नूं शस्त्र बनाया। फिर लाठी नाल लोहे दी नोक लाके बरछा बनाया। फिर देखिया बरछे दी पहुंच दूर तक नहीं है, लाठी दूर तक मार नहीं कर दी। तीर कमान आई, बंदूक आई, तोप आई, टैंक आए, ते अज ते मनुख तरह तरह दे खतरनाक मिजाइल और हाइड्रोजन बम तो भी अगे लंगे। एक छिन्न विच इस

0: ही पृथ्वी नू तबाह कर सकदा है। ऐसा ही शक्तिशाली होया, गर्स के जिस पासे देखी है इसने उन्नति की थी है। विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहे। तो प्राइमरी स्कूल तो बाद मनुखता पहुंची मिडल डेज। ए बचपने तो अगे लंगे जवानी दी दहलीज देच कदम रखन वाले लोग सन। द्वापर इस युग नो इस युग दी मनुखता नो समझान लई पढ़ान लई आए श्री कृष्ण। आप नुकेन लीला परशोत्तम आपने जिंदगी नो इस आधार ते खड़ा कीता कि मर्यादा जीवन लई है, जीवन मर्यादा लई नहीं है। मर्यादा जीवन दी रक्षा करे, मर्यादा कबूल, पर जिथे मर्यादा नु जिंदा रखन लई जीवन कुर्बान करना पवे उथे मर्यादा नु तलांजलि दे दो, उथे मर्यादा नु एक पासे रख दो। सियाणप आ गई, सूझ आ गई, समझ आ गई, आखिर मर्यादा ते मनुखता लई है, मनुख ते मर्यादा लई नहीं है। नहीं ते फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे तो उस मर्यादा दी कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख नो जिंदा रखन लई, मनुख नो सुखी देन लई, मनुख नो इंसाफ देन लई, मनुख नो न्याय देन लई। पर जिथे ए मर्यादा मनुख नो ही खा जाए, मनुख नो ही नष्ट करे, उथे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख नु बचाओ मर्यादा नु नहीं। कुछ सियाणा युग आया, गुरु नानक दी दुनिया। ए कॉलेज दे प्रोफेसर ने मनुखता बहुत सियाणी हो गई, ए सदी बहुत सियाणी सदी है, ए युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने, थोड़ा जिहा तुसी पिछे चले जाओ अपने दादे परदादियां नूं देखो, क्या इतने विकसित सन, क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी, क्या इतनी उन्हां कोल सूझ बूझ सी। ज्ञान वधिया है, सियाणप वधी है। तो सियाणे नूं पणाण दा ढंग होर आउंदा है, इयाणे नूं पणाण दा ढंग होर आउंदा है। इयाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, सियाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, इयाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने, सियाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने। इयाणियां नूं वी पढ़ाया जांदा है, सियाणियां नूं वी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामने सी, बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन, मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बनया, बहुत पक्की इस दे कुल सूझ ते समझ, नवी तो नवीआं खबरां ते लेके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी कुदरती गल है उतना अहंकार वधना सी। तो ए युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दिच लिखे हुए ने कि नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे भाव। मन नारद बन गया है, ऋषियां दे चों नारद नूं बड़ा सियाणा मनिया गया है, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल दिच उसका सन्मान, टुटियां नूं जोड़ देना उहदे कोल सियाणप है, और दो सियाणियां नूं तोड़ के रख देना इह वी उहदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी, और जोड़ तोड़ उही कर सकदा है जिहदे कोल जोड़न दी वी समझ होवे, तोड़न दी वी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ए युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵੀ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਭਰਮਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਭਰਮਣ, ਬੜਾ ਭਰਮਣ, ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਭੂਟਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਬ। ਬੜਾ ਭਰਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਯੁੱਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਟਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਭਿਖਾਰੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਭਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਮੰਗਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ? ਕੌਣ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੋਗ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। आखिर अहंकार तो इत्थे ही टिकदा है, मैं बहुत कुछ जानना, मैनू बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिना जिना कुर्सियां ते बैठदा सी उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनू हर पख दी समझ है, मैनू सब कुछ पता है। सिख मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा, और जीवन दे किसे पहलू दी मैनू कोई सूझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नू देण वाले दी। जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे आधार मिट जांदे ने, उस दे टिकण दे आसन जिहड़े ने ओ टुट जांदे ने, और सिख वास्तविक एक मनमरता दी निर्माणता दी मूर्ति बन के उजागर होंदा है, सामने होंदा है। जैसे सारे औगुणा दा आधार गुरु नानक ने अहंकार नू मनिया है, सारे गुणा दी बुनियाद विनम्रता नू मनिया है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत तत, सारे गुण ते चंगियाईयां दा जो निचोड़ है ओ है मिठास विनम्रता निर्माणता। निर्माण मनुख दे बोलां दे सख्ती नहीं होंदी, देखदे हां हत्थां दे छड़ियां ने, पैरां दे छड़ियां ने, पिंजर है, प्रभु ने जबान दे हड्डी नहीं बनाई, कन्नां दे भी बारीक हड्डियां ने, नक दे भी हड्डी है, मुंह मथे ते भी हड्डियां ने, बाहां दे भी हड्डियां ने, पैरां दे भी हड्डियां ने, पर जिस जबान ने बोलना है उस दे हड्डी नहीं, हड्डी सख्त होंदी है। इस गल दा प्रतीक है ए जबान तेरी बोल तो, तेरे बचना तो, तेरे बोलां दे सख्ती नहीं चाहिदी। जबान तो जो बोल निकलन वो सख्त नहीं चाहिदे। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिदे ने। जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिदे ने। जिस तरह जबान ही सारे रस मान दी है, इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहंदे ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है, सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है। ते फिक्का कौन बोलदा है जो सख्त सुभाव दा हो गया, ते सख्त सुभाव दा कौन हो गया जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणा दी बुनियाद है, विनम्रता सारे गुणा दा आधार है, और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अंडिठ करन वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है, उदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उदे बोलां दे कोमलता, उदी दृष्टि दे अमृत। सतगुरु ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा और मैं जानना चाहना। पहले जद कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो वो चल पे है, चल पे है, साधक हो गया है, पर सब कुछ जान लिया है, सब कुछ जान लिया है, सब कुछ दा पता चल गया है, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा, ए महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जांदा है, ईश्वर जैसा हो जांदा है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था अपनी कला ते अपने गुणा दा ढंडोरा नहीं पिटदा, ते कोई उसनों हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, वो अमान है, उदे च कोई मान नहीं। उस प्रभु दे च भावे गुणा दा खजाना है, इसे तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणा दा खजाना बन जांदा है ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा तो भी परमात्मा वर्गा हो जांदा है, ईश्वर वर्गा हो जांदा है। सतगुर इस तरह दी दात हर एक दी झोली च पान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: रामचंद्र जी राज के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों से ही जापता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अकिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि जो पुरख दा शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी दा शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है माँ बाप तो आया है तो उसके अंदर माँ दी अंश भी है, पिता दी अंश भी है, पुरुष दे कणु भी हैं और नारी दे कणु भी हैं। कहीं ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष दे कण ते पूरे ने, नारी अधूरी है अर्ध हम, और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी दे कण ते पूरे ने, पुरुष अधूरा है अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल से उसने ये गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा करते हैं, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जी संपूर्णता है ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आखिर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार है। तो इस समाजिक रसम को धर्म के दायरे में चलाने की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी भी लगे। और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत इस नाम रखा गया है आनंद कार, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहे हैं। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पड़ोसी भी है, ये दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है। और फिर किसी भी पत्नी सारे रिश्तिया पकियाई होवे पवित्रता होवे इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने। लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे कि पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फकर करन। ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आदरू बने उसकी खुशी बने। हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी कि बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन। साडे घर का पिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके घर दे हूं महक वंड रही है सौरे घर और मां बाप की खुशी बनी रहे महक फैल रही है खुशबू फैल रही है। पत्नी बने आदर्शवादी ते भैन बने महान दया मान करन भैना मान कर सारे रिश्तिया ने पकियाई ते पुख्त ही ते लाजमी है ते पत्नी होवे ते ऐसी ही कि सारिया ही खुशिया का सोमा बन जाए पति और पति मान कर। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे किसी महान नाल संबंध जोड़े और इन्हों दो आत्मावान के संगम इन दो शरीर के संगम दे कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हाँ दोहां नूं जोड़ने तीसरा चाहिए दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है दो कपड़िया जोड़ना है कोई धागा चाहिए दो इटा जोड़ना है तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है दो लकड़ा जोड़ना है श्रेय स्किल कुछ ना कुछ है चाहिए है दो दिलों जोड़ना है इतने दो दिल जोड़ने दो विचार जोड़ना दो ख्याल जोड़ना तो थोड़ी से चाहिए है। बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नूं इक करदा है दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपदे होर लवां ते समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया दे दो तरह दे होम दे रिश्ते ख्यालां दे रिश्ते विचारां दे रिश्ते मन दा रिश्ता जिहड़े होम दे रिश्ते ने इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने नानके दादके सौरे बे होम दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नूं जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर दी बच्चा किसे घर दा खून एक नहीं है किस तरह कहा जा सकता खून ये खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मनिया सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है विचारां की सांझ एक जो दोए मूर्ति धन फिर कही है सोए। महाराज कहते हैं असी पति पत्नी उसनों कहने विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उत्थे ही वरना नहीं जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उत्थे पैदा होता है और जिथे प्यार है उत्ते एतबार भी आता है एतबार भी मनुख का उत्ते नहीं जाता और जिथे एतबार है कहने ने सदाचार का वासा भी उत्थे ही है और जिथे सदाचार है करतार दियां सारियां बख्शिशां भी उत्थे करतार दियां सारियां न्यामतां भी उत्थे ने। आप सारे सियाणे बैठे बच्ची बच्चे भी ऐ विधाउणे सियाणे ने ये रिश्ता विचारां दी सांझ दा है ख्यालां दी सांझ दा है एक जो दोए मूर्ति ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਹਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਸਭ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਉਣਗੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: शरणगत निर्मल रीत
1: हेठ संग राम गुण रवे
0: बार रमकी दरगाह गवे
1: सुनकर बचन करन आगानी
0: मनस तोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: जे भाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकी कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभ जपने
1: हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम भो दुख ते नासे
1: संत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निर्भव होए बसे
0: सगल व्याध मन देखे नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चुके भ्रम गमन
0: नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चले बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावन नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिल करो विचार
0: एक सिमर नाम आधार
1: अब रो पाप स्वामी पसारो
0: शरण कमल विद मैं उरतार
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ
0: निर कर गहो नाम हर वत
1: के हो तन संचो हो भगवंत
0: संत जना का निर्मल मंत
1: एक आस रखो मन माही
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही
0: सो तन हर से वाते पावे
1: जिस सुख को नित बांचे मीत
0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करहे भली करनी
0: सासो बापर हर की सरनी
1: अन को पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अवखत लाए
1: सर्व निधान हर नाम निधान
0: जप नानक दरगह प्रवान
1: मन प्रबोधो हर कह नाई
0: स्थापते बैठाए
1: ताको बिघन न लागे कोई
0: जाके हृदय बसे हर सोए
1: कल ताती ठंडा हर नाओ
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस
0: भगत पाए आत्म प्रकाश
1: हित कर जाए बसे अविनाशी
0: तो नानक काटी जम फासी
1: सत विचार कहे जन साचा
0: जन्म मरे सो काचो काचा
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव
0: आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यो रत्न जन्म का होए उधार
0: हर सिमर पुराणे आधार
1: अनको पाप न छूटन हारे
0: सिमरत शास्त वेद विचारे
1: हरती भगत करहु मन लाए
0: मन वंशित नानक फल पाए
1: संग न चार स्थिर रह तना
0: काल पटावे मूर्ख मना
1: सुख मीत कुटुंब हर बनेता
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: अस स्थिर रथ सवारी
0: झूठा डंफ झूठ पसारी
1: जिंदी ये तिस बुझे न बगाना
0: नाम पसार नानक पछताना
1: गुर की मातू ले आने
0: भक्त बना पो डूबे सियाने
1: भक्ति भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तमारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माही
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
1: आप जपो नाम जपाव हो
0: संत कहते रहत गत पाव हो
1: सार भूत सत हर को नाओ
0: सहस भय नानक गुण गाओ
1: गुण गाव तेरी उत्तर समैल
0: निरस जाय हो मैं बिख फैल
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल
0: सास ग्रासर नाम समाल
1: छाड़ सियान सगली मना
0: सात संग पाव है सस्तना
1: हर पूंजी संच कर हो व्यवहार
0: हम सुख दर गए जयकार
1: सर्व निरंतर एको देख
0: तो नानक जाके मस्तक लेख
1: एको जाप एको सलाह है
0: एक समझ एको मन आहे
1: एक उसके गुण गाओ अनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप
1: अंत विसार एक ते भये
0: एक आराध प्राप्त गए
1: मन तन अंतर एक प्रभ राता
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया करया तो शरनाई
0: नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान
0: कर कृपा देव हर नाम
1: साध जना की मांगो धूर
0: पार ब्रह्म मेरे शब्दा पूर
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो
1: चरण कमल से लागे प्रीत
0: करो प्रभु की नित नीत
1: एक कोट एक को आधार
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए
0: रस पावे बिरला कोई
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
1: सुपार परे प्रेम रस रंग
0: उपजे चाहो साध का संग
1: परे सर्व आन सत्याग
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग
1: बड भागी जप्या प्रभु सोए
0: नानक नावर ते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जान को प्रभु होए उदयाल
0: सेवक की नसदा निहाल
1: बंधन काट मुक्त जन भया
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: पुन्नी सरदा सा पूरी
0: अब रहे सत्संग हजूरी
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समाए
1: सोक्यों बिसरे जे भाव न भाने
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह रख है
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते घट है
0: जन्म जन्म का टूटा गंड है
1: गुर पूरा तत् ए है बुझाया
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो ए काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अब रह नाम जपावो
1: भाई तरी

0: जैसा हरि होए। भगत कबीर ऐलानिया कहिंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए कि हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिआं नूं दित्ते हुए ने, सीमित ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुँचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिआं दा और मुखी सजणा दा, बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है Live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: परमात्मा समस्त

सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र सोखा है, के सर्वत्र भोखा है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधानिया, के सर्वत्र जापया है, के सर्वत्र तापया है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

ओड़ी अपने आप साजू अपन रचो नाओ दुई कुदरत साजिया कर संडो चा दाता करता आप तू तुस देव कृप साओ तू जो सबसे दे सिंध कवाओ करे असन डिठो चाओ।

निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच।

अस दान, गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजे। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर। पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।

प्रेम दे जद बराबरी आउंदी है मानव मानव बनदा है, भगती दे जद बराबरी आउंदी है मनुख परमात्मा हो जांदा, हर का भगत सो हर ही जया। प्रत्यक्ष रूप दे साकार रूप दे किधरे परमात्मा दे दर्शन करने तो भगत दे दर्शन भगवान दे दर्शन। संत राम में भेद कछ नाहीं, एक जन कई मैं लाख करोड़ी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने संत ते राम विच कोई भेद नहीं, ये दोवें इक्को ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, भगत रविदास। कनक कटक जल तरंग जैसा, तू एक सोने की शिला है मैं उससे बनया होया गहना। तू सागर है मैं उसकी एक तरंग हां लहर, ठीक है मैं लहर हां पर मैं तेरी ही लहर, ठीक है मैं किरण हां पर मैं ए सूरज तेरी ही किरण हां, तेरे ते मेरे च की अंतर। इत्थे भगत अपने विच भगवान दे दर्शन करता है। भगत कबीर कहते ने बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना ईश्वर होना। इस तो बिना इसकी तृप्ति नहीं होगी, भटकदा भी रहेगा जमदा ते मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा संतापग्रस्त भी रहेगा, वक्ती तौर ते आनंद रस भी बनता रहेगा लेकिन कुरलांदा भी रहेगा। क्योंकि जितने चिर तक मंजिल की प्राप्ति नहीं आती, मंजिल की है मनुख का परमात्मा होना। मनुख हुक्मरान हो गया, धनवान हो गया, छोटी का साइंटिस्ट हो गया, बड़े तो बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है मनुख का भगवान होना। शम्स तबरेज खुदा के अगों प्रार्थना करते हैं, मन तो शोधी तो मन शोधम, मन जान शोधी तो तन शोधम, ई कसना गोयद बाद दें मन दी गरम तो दी गरी। बड़ा एक महान फकीर होया ईरान विच, कहिंदा खुदा तू मैं हो जावे मैं तू हो जावा, मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, फिर कोई ए ना आखे खुदा कोई हो रहे ते शमस तबरेज कोई हो। ई कस ना गोयद बाद अजी मन दी गरम तो दी गरी, तू कुछ हो रहे मैं कोई हो रहा ऐसा कोई ना आखे, इस तरह आपा हो जाइए। वो ते मंग पिया करता है मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, मैं तू हो जावा तू मैं हो जावे, फिर कोई ये ना आखे कि असि अलग अलग हाँ दीगर। रविदास कहने ना अपा तो एक हो गए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सच्ची तृप्ति उस दिन मिलती है मनुख नूं जद मनुख परमात्मा हो जाता है। जैसे परमात्मा दे जन्मना ते मरना नहीं है, ऐसे मनुख के अंदर जीवन की लालसा खत्म हो जाती है, मरण का भय भी खत्म हो जाता। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रित पाल ही लेखे सास जरास। जीवन की आस उतने चिर तक बनी रहती है जितने चिर तक इस जीवन तो कोई उच्चा जीवन ना मिले। मरण का भय भी उतने चिर तक बनिया रहता है जितने चिर तक इस जिंदगी तो कोई उच्ची जिंदगी नहीं मिलती। मौत का भय है इस गल का सबूत है, अजे इसनों वो जीवन प्राप्त नहीं होता। जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, अजे वो उसनों जीवन मिलिया ही नहीं जिन्हों परम जीवन कहते। जिंदगी लोभ दे बतीत हो रही है, पै दे बतीत हो रही है। और मैं अर्ज करा मनुख किधरे झुकदा भी है या ते लोभ करके झुकदा या पै करके झुकदा है। लोभ करके झुकदा है इस तो कुछ मिल सकता है, बह करके झुकदा है स्वास्थ्य झुकदा है कुछ खो सकता है, खोवे ना तो झुक जाएंगे। सजदा पे

करताप रखे निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रम दा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वह जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ा सारियां मंगा, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होण वाला है या खत्म होण दी संभावना। भय उसे दई है, चाहत लालसा जीवन दी और परबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए, पुराणक प्रसंगां नु देखिए, तो जीवन दा दाता दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिवजी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले विच ते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वह सेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनया रहे बनया रहे बनया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दे क्योंकि तेरे गले विच सप्प ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है और तेरा वसेबा शमशान है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है। मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जे जुग चारे आर जा होर बसोनी हो रहे। जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए,
ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ 10 ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਲ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀ ਰਥ ਜਗ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ, ਮਹਾਨ ਆਖਣ, ਪੂਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਭੈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੌਗਾਤ ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ, ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਹੀ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਠ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੜਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ, ਜਦ ਗੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
अमृत नूं प्रगट करना। यह साधना धार्मिक जगत दे आदि काल तो चली आ रही है। आबे हयात अमृत इसकी तलाश आदि काल तो चली आ रही है और यही प्यास मनुख दे प्राणा दे वख वख रहबरी पुरुषां ने अपने ढंग नाल जरूर ऐसा जल जिस विच उन्होंने मंत्र पढ़े, जिस विच उन्होंने अपनी अध्यात्मक तरंगा प्रवेश कीतियां, आबे हयात चरणामृत इस तरह की प्रथा बहुत लंबे समय तो चली आ रही है। आबे जमजम कह दी है या चरणामृत कह दी है, इस बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। कहने जप तप का असर पानी से बहुत ज्यादा पीता है, पानी सारिया की प्यास हो जाता है, पीने के काम आता है, लेकिन पानी वाइब्रेशन नो अध्यात्मक तरंगा नो खुद पी जाता है। ऐसा बहुत लंबे समय तो जपीश्वर अध्यात्मी लोगों की समझ से पकड़ विच आया। फिर यह भी देखा गया कि जिस मनुख का जीवन अमृतमय हो गया है, वो जिथे कदम रखता है वो धूड़ भी अकसीर हो जाती है, वो चरण धूड़ भी महान हो जाती है, उससे भी असर पैंदा है। भारत देश चरणामृत की रस्म बहुत पुरानी, बहुत पुरानी सनातनी मंदिरों में ते प्रसाद भी चरणामृत चरण अमृत चरणा का धोता होया जल केड़े चरणा का जो जीवन अमृतमयी हो गया है, उसके पैर अमृतमयी ने, उसके अत अमृतमयी ने, क्यों कि उसका जीवन अमृतमयी है, उसकी सोचनी अमृतमयी है, उसकी दृष्टि अमृतमयी है, उसके बचन अमृतमयी ने। इस वास्ते उसके बचना दियां लहरां जल नू छू जान तो जल अमृतमयी है और वो जल किधरे अमृतमयी वन हो गया, उसके चरणों नू छू जान तो वो जल चरण अमृत है, चरणामृत है, चरण अमृत। तो बहुत पुराने समय तो चरणामृत की प्रथा भारत देश प्रचलित थी और अजे भी सनातन जगत देश है। गुरु घर देश भी यही प्रथा सी, चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखा पिलाया। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा बयान करते हैं, सिखी का दायरा वधन लग पाया तो चरणामृत देन वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लभने सन, तो धर्म गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां। मंजी नो छोटे तख्त नो परशियन विच मसनद कहिंदे ने, ते मसनद दा ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदा दी प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। वक वक इलाकियां विच इस सिखी दा प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी दा वाधा होंदा गया। मनुख दी कमजोरी सहजे सहजे इना मसंदा हुंदा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे धन संपदा वधे उतना ही उसके हृदय विच धर्म वधे,
जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रवे, ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर दे अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा चार कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ते लालसा जागी अपने सिख बनाई, अपने सिख बनाई, अपनी सिखी का वादा करी। लिहाजा कार भेट जो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे का पूरा खुद अपने कोल रखण लगता है, गुरु तक नहीं पहुंचांदे। इन्हां विच कुछ कने ते गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका आत्मा कमजोर होवे और पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा के लैंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसी किसी नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जद मसन चोटी दे धनाड हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरणामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता, और ये अधिकार एक नो नहीं पंजां नूं दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े पंज? जो गुरु नूं प्यारे ने, जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार है, रोम रोम विच गुरु का प्यार है। ऐसे पन जो गुरु नूं प्यारे ने, ते गुरु का प्यार जिन्हां दे अंदर है, वो वारी वारी पंज बाणियां पढ़न, जपजी साहब, जाप साहब, सवई है, चौफई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नूं बाटे हुए दे जो पानी है उस दे च रखन, ताके हिरदे नूं जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी दे प्रवेश करन, ताके वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे दे च लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है, हिरदे दे च वासना है, अखां दे राही प्रगट आउंदा है, हिरदे विच परबल हंकार है, अखां राही प्रगट आउंदा है, पर हिरदे विच वसी होई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट आउंदा है, और उस सख नूं अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ये प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई।
ਵਿਚੇ ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੀਸ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਸ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਠੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਪਹਾੜੇ ਪੜਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਕਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਰੋਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਕਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਰੋਤਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ
साफ कहने ने सिख सो रहत पंच जो मिले मम स्वरूप सो जानो भले सिख पंचों में मेरो वासा पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है, पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इना विच ते मेरे कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंग रहे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लेंगे। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया थी, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पन्या ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हाँ तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे है ओही अमृत छका सकदे है। और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते ने, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकते हाँ उसनु रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख का स्वरूप ही तां बनता है जो उस कोल रहनी हो। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समा। ये मानसिक रहत है। तन दुते पन ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ये सिख मैनू प्यारा ने। क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहने नहीं रही। धरे केस पाहुल बिना एक ही मूर्ख सिख, किसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंद धरायो। खोते नु इशनान कराते उदे गल विच फुल्लां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंद धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही
आसी होए होत जग माहे। अगर इस्ता करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनू वड्याण नहीं लगे, बल्कि हसनगे उसते, वे लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु स्नान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते दा खोता है। सिर्फ सिखी ई पंज हरफ हिरदे दी बनावट बनेगी, बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उते शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंज ककारा नाल, कक्का के इस दी आवाज जो पर्शियन उर्दू दे अल्फाज दे है, अल्फाबेट दे, उसनु कहने ने काफ। तो भाई साहब भाई नंद लाल जी फारसी दे ही आलम फाजिल गजनी तो आए, लहजा उना दे बोल उना दी बाणी सारी दी सारी फारसी दे है। आप फरमान कर देने, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, सिखी दिया पंज निशानियां पंज काफ दे हरफां दे बंद ने। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, के हर गिज ना बाशद ई पंज माफ। इना पंजा दे चों एक भी निशानी नहीं, सिख हरगिज माफी दा खौशगार नहीं बन सकता, उसनों माफ नहीं कीता जा सकता। केड़ियां पंज निशानियां, कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेत अति जुमला निशा। कड़ा कार दो कृपान, काच कछहरा, कंगा बिना, बिना केस हेत अति जुमला निशा। पर केसा तो बिना बाकी चार निशानियां परवान नहीं, जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी, केसा तो बिना कड़ा कचहरा कंगा कड़ा ये शोभा नहीं पांदा। इना दी शोभा, कृपान दी शोभा, कड़े दी शोभा, कचहरे दी शोभा, कंगे दी शोभा, केसा करके केस मूल में। क्योंकि राजे परीक्षित तो सड़े देश दे केसां दा मुंडन आम चल पया सी, भावें सब तो प्रथम उसने केसां दा मुंडन उना ब्राह्मण जिन्हां ब्राह्मणा ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपति की थी। ओ किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई, ते सारे दे सारे हस पए। जनमेजे ने इना दे सिर मुन दिते, कुछ कतल कीते, बुथेरिया दे सिर मुने। इस तरह सिर नु मुन्ना मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने एक सजा ही दिती। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग दसम ग्रंथ विच लिखे है, प्रथम बांध के सबके मूड मुंडाए, पुनर ए डुआ शीस तांके लगाए, इना ब्राह्मणा नु बन के उना दे शीस मुन दिता, मुंडन कर दिता, तो उन्होंने घोर बेदबी की थी। फिर इन्हों छोड़ दिता, इतनी वड्डी सजा देती। जिन्होंने छोटी सजा दिती उन्होंने तो सजाए मौत दिती, पर जिन्होंने वड्डी सजाए दिती उन्हों का मुंडन किया, जीवदे ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा, थोड़ा जोड़ा थोड़ा दाड़ा
ਫੜੇ ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾ ਚਟ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਨ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੇਸ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰ ਹੈ, ਮੋਰਨੀ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਮੁਰਗਾ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ ਮਦੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹਿਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ। ਸਰਬ ਲੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੰਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਸਦਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਵਜਾਇਦ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਕੜੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੜਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ,
लिहाजा तेरे इस हाथ में शराब की बोतल ना हो, तेरे हाथ किसी पर जबर ना करन, तेरे हक किसी का हक ना खोवन। तू गुरु की निशानी हाथ में पहनी हुई है। कछहरा एक ऐसा पर्दा और इसका इतना मनोविज्ञानक मन के असर है कि सहजे सहजे आज से सारी दुनिया ने धारण कर लिया है। भावे ओ रूप ना हो जो कलगीधर ने सानू दिता है, पर कुछ ना कुछ छहरे दी बनावट जैसा ही कछहरा सारी दुनिया ने आज धारण कर लिया है। और इसनू शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसां दी सफाई लई ते है, लेकिन इस दे नाल जप तप करने तो बाद जो थोड़ी जिया दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तिष्क हौला हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और नाले केस समर जाते हैं। कृपान ठीक है, अज हाइड्रोजन बम तो भी मनुख अगे लंघे और कुछ तर्कशील ऐसा कहते हैं कि इस एटम बम हाइड्रोजन बम दे जमाने ये निक्की जी कृपान की मैंने रख दी है, जो सिख जगत ने पहनी हुई है, जो कलगीधर ने दी है और पहनना लाजमी करार देता है। दरअसल ये कृपान एक प्रतीक है, मन देते इसका असर है कि तू केवल संत नहीं सिपाही भी है। केस संत का स्वरूप पेश कर देने, कृपान सिपाही का रूप पेश कर दिए। इस तरह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मनुख नो संत सिपाही बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक यतनशील रहे मनुख नो संत बनाने दे। इसे ही संत नो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। जब कोई संत सिपाही बनता है उसके हथों मजलूम दी रक्षा होती है, मुल्क की तामीर होती है, कमजोरों की उसारी होती है। और जब कोई केवल सिपाही है संत नहीं, उसके हथ मजलूमों की गर्दन कटते हैं। चीन के एक प्रसिद्ध संत ने कहा है, सिपाही दे सैनिक दे जिथे पैर जम जाते ने टिक जाते ने जमीन उत्थे उजड़ जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। सिपाही के कदम बर्बादियां नू जन्म देंदे ने, जन्म देंदे ने बर्बादियां। अगर सिपाही संत पहले है तो उदे कदमां नाल तामीर होंदी है मनुखता दी, उदे कदमां नाल धरती जरखैज होंदी है। ठीक आख्या है चीनी संत कन्फ्यूशियस ने कि जिथे रुक जाते ने सैनिक दे पैर सिपाही दे पैर, उत्थे कंडे ही कंडे रह जाते हैं, उजाड़ ही उजाड़ रह जाता है, बर्बादियां ही बर्बादियां जन्म लेंदियां ने। पर जिथे ओ सिपाही जो संत पहले है उदे कदमां दे राही तामीर आउंदी, उदे हत्थां दे राही उसारी आउंदी है और धरती हरी भरी आउंदी है। मनुख नूं इंसाफ मिलता है, कमजोर दी रक्षा होती है और जालम दे पैर रुकदे ने। तो इस तरह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संत नूं सिपाही बनाया और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र। तो शस्त्र पहना दिता, कृपान इस वास्ते पहननी है, इस छोटी जी कृपान नाल कोई मैदान ही जंग दे च लड़ना नहीं, पर ये छोटी जी कृपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हाँ सिपाही हाँ। और इस तरह का अंदर वीर रस बनिया रहे,
तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है, और किसी तरह का भी कोई हथियार हो उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनया रहे, अंदर वीर रस्ते बनया रहे, वो तो ताही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने हो। तो इस तरह किरपान पहनने की, धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशान है सिखी पंज हरफ काफ के हर गिजना वाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो का चुकंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानिक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने, की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है, आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन कर दई हैं। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जांदा है जो मुर्गा ने मर चुके ने, जिवें घर विच गया है चलाना कर गया है, तो मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते, और घर विच रखांगे तो बदबू, घर विच रखांगे तो गलाजत, घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट ले जांदे हैं और जला के खाक कर दें। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने मैल नाल भर जाते हैं, और बीमारियां दे ओ जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून जो मांस दे नाल जुड़े हुए है, जिंदा है, उसनू कटांगे तो खून निकलेगा, उसनू कटांगे तो पीड़ होगी, और जो अगे बढ़ चुके हैं मैल नाल भर गए कि मुर्दा है। इस नाखून नू कटना मैल नू कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसको खत्म कर दिता है, मुर्दा कर दिता है, तो मुर्दा तो शरीर तो अंग तो एक पासे करना पड़ेगा, जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नू एक पासे करते हैं। हां केस भी कुछ मरदे हैं, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं, दाड़े दे केड़े वाल मुर्दा हो चुके हैं, सिर दे केड़े केस मुर्दा हो चुके हैं। कि साढ़े हत्थां नू नहीं पता चलता, कि कंघे नू पता चलता। जैसे जैसे असीं कंघा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जांदे निकल जांदे। जैसे नाखून रोज वधदे ने रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़दे ने। केसां दा जन्म ते मरण